0: करता सोई,
1: तुद आपे पावे सोई वरते जी तो आपे करे सो होई,
0: तुद आपे श्रेष्ठ सब पाई जी तुद आपे श्रेष्ठ सब कोई,
1: जन नानक गुण गावे करते की जी जो सबसे का जान होई,
0: आसा महला चौथा
1: तू करता सचैर मैडा साई,
0: तू पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहा,
1: सब तेरी तो सपनी ते आया,
0: जिसनु कृपा करे तन नाम रतन पाया,
1: गुरमुख लादा मनमुख गवाया।

नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गौर अवतार जगमग ज्योत विराजनी श्री आपचल नगर मझार।

सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय। जिस जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावें ताए। सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी। सब थाई हुए सहाय दसों पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अम डिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े। तन आरियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सां सुवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवा

प्रभु के सिमरन गर्व नाम असे, प्रभु के सिमरन दुख जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अंदर जागे, प्रभु के सिमरन पौ ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन ओ सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला, से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तिशना बुझे, प्रभु के सिमरन सब किस सुज, प्रभु के सिमरन नाहि जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माए समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नान जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पदवंते, प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताज, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अंध कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदन जाग, नानन सिमरन पूरे भाग, प्रभु कह सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कह सिमरन कबू न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुणवानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन नैचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन, प्रभु के सिमरन आनंद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार, सिमरे से जन जन को पब में आ, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौ कुंड जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल कारा, हर सिमरन में आप नंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक कै प्रभु साथ।

हर हर जन कहे माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जने अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते।

आपसको जो जाने नीचा सो उगनी है सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल किरी नार हर नाम तिन कर कर चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिष्ट साजना।

तुमरी कृपा में सुख नेरे। कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी।

निंदा सुने हैं। मिथ्या हस्त पर दर कोहरे, मिथ्या नेत्र पेक्ष पर तिरया रूपाद, मिथ्या रसना भोजने अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कुता।

जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुसै जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुसै समावे।

रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा बढ़ने कौन परानी नानक साधक शोभा ब्रह्मा इसमानी साधक संग गुचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा।

परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।

संत के नंद को सदा विजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख। संत का दुखी सदा अपवित्त, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी मांगकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते डरे। संत के दुखी को नाहीं टाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अदबी ते टूटे, संत का दुखी कदे काज ना पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर ते थो था, ज्यों सास मना मृत कीलो था। संत के दुखी की जड़ कृष्णा।

सोए। नानक बिघन लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सास वेला कर ले जियो, नैनो पे ठाकर का रंग।

जन जन अपना प्रभु विचाता सो जन सर्व तो का दाता तिसके सरण सर सुख पावे तिसके दर्श पाप मिटावे और सयान सगली शार्त जन की तू सेवा लाग।

का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जी हृदय हर नाओ अनगवार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता आठ बहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जान जन में पार ब्रह्म एक आपने परम सह से अण भलया न जाइए।

संचो हो वो भगवंत। सांजना का निर्मल मानते एक आस राखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस धन को चार कुंटुर धावे, सो धन हर से बाते पावे। जिस सो को नित बादशाह मिहि, सो सुख साधु संग परीत। जिस सोभा को करे भली करनी, सा सोभा बजर की सरनी।

कोए जाके हृदय बसे हर सोए। काल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख भाव भाव इनसे पूर्ण होया आस भक्त पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे वनासी कौ नानक काटी जम फासी तत्व विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा।

स्वाओ नेत्रो बे दर्शको हे मन विकसे सा चंतो हे भक्त जना के मंतन रंग बिरला को भावे संग एक बस दिजे कर्मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नान क्रिया सर सुमाए प्रभु शांत दीन दयाल भगत बछल सदा कृपाल नाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मन ही दम निर्गुण यार नीच जान नान तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंड मुक्त मोख पाए

Господи, जाबाकारे कृष्णा दृष्टे तापापुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब हर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चेन्ना जापत तब हर सुख को जय व्याप्त जब आपने आप पार ब्रह्म।

अवनाशी सुखे अपने आसन दन्म गौ कामनासन जब पूर्ण करता प्रव सोए तब जम की त्रास कौक सोए जब अवगत गोचर प्रव एका तब चित्र गुप्त के पूछ लेखा।

भी पर जाय निर्मल पुरुख पुरुख पद होता दे मिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन है मान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय क्षण शिथिल लग्न को की। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय कैसे भूख कम तृप्तावे। करण करावन करने हार नान करते का नाही समार। जब अपनी शोभा अपने संग मनाए तब कौन माए बाप मित्र सुध भाए। जय सर्व कला पे प्रवीण तय वेद देव का कौचीनम।

जय शाल शेद भेद समाया हुआ किसे भी आप तुमाया आप उसको आपे आदेश दा गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपने आप आप बतियारा तय कौन कदे कौन सुनने आरा भो बेअंत उचते ऊंचा नानक आप उसको आपे पहुंचा जय आप रचो प्रपंच कार तय गुण में कीनो विस्तार।

जाए, तिस्ते दूर कहा को जाए। उभरे राखण हार त्याय, निर्भउ जपे सगल भउ, मिटे प्रभु कृपा दे प्राणी छुटे। जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचनार। सर उपर ठाडा कर सूरा नानंदा के कार्य पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट। दर्शन भेख दो दृष्टि, चरण कमल जाके अनु, समल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा से परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसे सोत निहाल,

संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रह सत वचन साधु सब कहे जो जो होए सोए सुख माने कन करावन हार प्रजने अंतर बसे बार भी ओही नान दर्शन देख सब मोही आव सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार आनक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आवे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नान तिस जन आप जाए सर भूत अमृतारा सर्व नैन आप पेखण हारा सर्व समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आपन जान खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब कह माता लिप्त हो रहे जोगिश कहना सो आपे कहे आज्ञा होवे आज्ञा जाए नान जा पावे ता लय समाए इसते होए सुनाए बुरा और कहो किने किस कराया पला कर तू तर निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत आपन संग राज ताकि गतमत कही न जाए दूसर होए तसो जी पाए

पियो। चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंगन एक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह धार उत्तम श्लोक साध के बचनम लीक लाले रतन सुनत कुमावत हो तो उधार आप तेरे लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा रंग जय जय शब्द नाथ बाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे पर ढे गोपाल महात के माथे नानक उधरे तिनके साथे सरन जोग संसार नहीं आए कर कृपा प्रभु हम मिलाए मिट गए बैर पे सबरे ना अमृत नाम साध संग लैन

असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव अस

गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे। सेई तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साचे नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई।

नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले। चाचरी छंद त्व प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रमान हैं निदान हैं त्रवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं इंद्रसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्य

अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं नरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांदो तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं

पवित्र प्रतिसा अदिसा अदृसा अकृसा भगवती छंद तो प्रसाद कथते के आछिज देसा के आपिज भेसा के आगंज करमा के आभंज भरमा के आभिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत बरना के विभूत करना के राजंग प्रभाह के धर्मंग तुजा है के आशोक भरना के सर्वा अपरना के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुप अनुपै के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजा कै रही मै रिहा कै के पाक व्याव है के गैबुल गैब है के अफबुल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमै के परमंग फेहमै के अकल अलामै के साहिब कलामै के हुसनल वजू हैं तमाम उल रुजू हैं हमेशल सलामै सलिखत मदामै गनीमल सिकस्ता ग्रिबल परस्ता बिलंदल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजुअल निधानै हरीफल अजीमै रजायक यकीनै अनेकल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल नवाज है गनिमल खराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं के सुजुक्त सुधा हैं प्रपुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो प्राज है सदा सर्व साज है समस्तल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद तो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजा है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है क्रीमल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबल नवाज है हरीफुल सिकन है रासल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तल नवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब करा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल नवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवान है तमाम मुल तमीज है समस्तल अजीज है परं परम ईस है समस्तल अदीस है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है मिकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है
कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अपंग है, मद पार शांत प्रसाद। मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम, अरबर अगंज हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुभव अनास मुन मन प्रकाश। गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम, अनछिज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गत मित उदार, जल थल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत। अनुभव अनास त्रित तर तुरास।

अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामेत्र पंगित्र काले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलह अपह अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नरकामंग विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुतर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी क्रिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती।

सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दया करिय, सब बैरन को आज संगरिय, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रासन वरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिहो रच्छा, राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन

करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सवतार आप।

अनाद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड।

कहूं सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता, जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होवे मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल का एक बार त्या है, ताके काल निकट नह अह। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिसट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनकम है हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होए।

खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल विख सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन कौ छै करता श्री असतुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावे सुनै मूड चित लाए चतुरता आवे दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहै हो जो जाकी एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्र है सहस पणिज अर्ध सहस फुन तीन कहिज भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यों राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यों

आवहो संत प्यारो हो अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी कित द्वारा पाइया। तन मन धन सब सौप गुर कौ।

हर हर त्याया, करमी सहज न उपजाय, बिन सहजै सहसा न जाए, न जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन धोवहो सबद लाग हो,

सुनहो संत हो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुरते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई पुछहो बिबेकिया जाय। अनेक जूनी भरम आवै।

ए रसना तू अनरस राच रहे तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न त्रिसना लागै आए। एहो हर रस करमी पाइयै सतगुर मिलै जिस आए, कहे नानक होर अनरस सब।

जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिख्या पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान होआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत रखी। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी।

0: सच लियाओ बड़ी बड़ी जने चलता बड़ी बड़ी जाने आलाओ बड़ी बड़ी बुझे सब पाओ बड़ी बड़ी जा पुछना दाद बड़ी बड़ी जा पियाओ नानका नकथी जाए की तकरना सरबर जाए महला तू जा
1: यह जग सच्चे की है।

रूपी इसमा है कृपा कर जी अपरिता गुरु का शब्द कमा है नानक है सुन जनो हित संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर रखन कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बक्सी

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुम जिन सचो सच वर्ताया जिस सुबह तिसमें सच तत्न तत्नी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया।

नमस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन अलग तिहाई है, फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व ले

जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत है सर्व शब्दों में एक शब्द को जाने पे हो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महल्ला दूजा हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा भाव सेव

पाठ पुस्तक संध्या वादन शिलभु स्वगत समाधन मुख चूट प्रभु कृषारंग त्रैपाल त्यहाल विचारंग गल माला तिलक लाटंग दोई तोती वस्त्र कपाटंग जय जान ब्रह्म कर्म सफो करने शोक।

0: दर्द लिखा फिर सुते नानका जुते
1: देख किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सबको।

और मत स्नोक लियो वो जो पैदू ना खाए, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, वो जो गोहेड़ा मोहे मोहे पाना खाए, जिसका दिता खाओ ना तिस कहिए साबास, नान हुक्म ना चल रही।

साहिब जी हो हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत चाड़ बिखे बिखाही माया मोह परम पै भूले सुतदार सो प्रीत लगाई एक उत्तम पं सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई सो कहो टल गुरु सेवी है एहन सो सहज सुपाय दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाय ओ वै सिफत खसम दे नुरी अर्शों कुरसों

हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरबाना दया तारी हर नाथ नानक सरन परे दुख पंजन जाका वड परताप टोडी माला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारे कोटे अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारे रहाओ खोजत खोजत बौ प्रकारे सर्बे अर्थ विचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक आनंद करे हारे।

सगलो तारे सगले प्राशत मिट्यो रे जां को लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर पास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कार पंजवा दो पदे एक ओंकार सत

जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन दे।

क्रोध बिन से मद ठीठे अस्थिर भय साच रंग राते जन्म मरण बहर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बेओन चले सब मोटे छोटी महला पंजवा साध

जन अपना बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बोहना संकट द्वारा, नानक सरने

हम जाचक तू अलख अपेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार पुंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानण अंधहार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोय बाप दिसे वे जात न होय। एके को नाही पहो कोय करता करे करावे सोय। शब्द मुए मन मन मन ते मारिया ठाकर है मन साचे तारिया। अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला। गुरबचनी मन सहज ध्याने हर के रंग रता मन माने। मन मुख भुले बौराने मन मुख पारो भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह न सके खिन। सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रा बिसरे हो मरो दुखाली। सास ग्रास जपो अपने हर पाली सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ अगमा गोचर दे दिखाए बिरगुण करनी क्या कार कमाए। हो मैं मेट चले गुर शब्द सुमाए। मनमुख बिछोड़े

माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी रख ले वह जन अपना ज्यो प्रहलाद हरनाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत मित कहिए हर किए पतत पवना ओह टोवै टोर हाथ चम चमरे ओह ओ हर उधरे ओ परे ओ सरना प्रभ दीन दयाल।

हमरा चित लोभित मोहे बिखिया बहु दुर्मत मैल भरा तुमरी सेवा कर न सकै प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जप नर हर नाम नर हरा जन ऊपर कृपा प्रवतारी मिल।

सर्व दुख हर सिमरत नासे, जाके संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होत तन छार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब

हरि चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा धर्म छाया चंचल संग न चालति सखिए अंत तज जावत माया रस भोगण अथ रूप रस माते इन संग सुख न पाया तन तन हर साध जन सखिए नानक जिनी नाम ते आया जाए बसो वड भागणी सखिए संता संग समाइए तह दुख न भूख न रोग ब्यापे चरण कमल लिवलाइए तह जन्म न मरण न आवण जाना निहचल सरणी पाइए प्रेम बछो न मोह ब्यापे नानक हर एक ते हाइए।

हरे राम अल्लाह का बार बार साचा यहाँ पर मार मिलाइए हमें मोदालो जालो शब्द मैल टिकाइए दर जाए दर्शन करी वाणी तार तार नहारिया हर नाम अवरद चाग दे दी नान कौर दारिया मलावर मला बैला मैं मन चावकना सा चवगा सी राम मोहे प्रेम ब्रे प्रभ ना सी राम अंग तो हरनाथ नाते दिसे पावे सो दिए कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिये मैं अवर ज्ञान ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे

भंडभागिया सुहागणी हर मस्तक मन रामा हर प्रभ हर सुहाग नानक मन भण राम निमाण हर मन है हर प्रभ हर अभिराम गुरमुख आव गया नित हर जप राम

पद भाई है राम सरिंग बाल नौ चरे बाल गंगे दो चार नरस राम प्रभ दो चार काया का कगरस राम राम वही दुख न जानी कोट जोनी बस न राम नानक बिन हर वर्जे जाना बेटा किरम बसवा राम लाए ब्रो भगवान संगे

0: सुखमणि सहज
1: सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ
0: के सिमरन गर्व नाम सहज।

0: संग मचे
1: जो शरणा सो अस्थिर कर माने
0: जो हो वर्षो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका शर्म करे
0: संग सहाय तिस पर हरे
1: चंदन ले भूतारे तुहे
0: गाता प्रीत प्रसम संग होए।

0: मिथ्या तन तन कुटुंब सुभाया
1: मिथ्या हउमे ममता माया
0: मिथ्या राजोन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ स्त्री असमस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया फे फास्ता
0: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान
0: अस्थिर भक्त साध

साहिब जी दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ

धनों करो सच्चे पातशाह जी उत्साह हुए भाई सच्चे पातशाह जी मनजोत सिंह सच्चे पातशाह जी धालीवाल सपुत्र भाई उपकार सिंह माता सुखविंदर कौर सच्चे पातशाह जी भाई रणबीर सिंह जी रंधावा सच्चे पातशाह जी सपुत्र भाई बिक्रमजीत सिंह माता कमलजीत कौर भाई मनजोत सिंह रणबीर सिंह सच्चे पातशाह जी जो अज तो कुछ दिन पहला सच्चे पातशाह जी हादसे में चढ़ाई कर गए पातशाह जी सो उन्हां दे रूह की कल्याणता वास्ते सच्चे पातशाह जी अज सब तो पहला उन्होंने अंतम संस्कार हुए हैं उपरंत सच्चे पातशाह जी परिवार ने संगत ने आप दे दर ते हाजरी लवाई सच्चे पातशाह जी जो उन्हां दी रूह की कल्याणता वास्ते रूह के भले वास्ते दो श्री अखंड पाठ साहिब ब्रह्म सन इस वेले उन्हां दी संपूर्णता हुई है राम कली सादे उचारण।